लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परे पार तन्ने सेव्या बार बुद्ध तिरलोचन गुरमिल पई सिद्ध

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए। एबद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म भ्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद

दुख सुख बंधो संसार मन उधरण का साजनाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खाहे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहो हे सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर रामानंद स्वामी।

मेल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रखाओ सतगुर संत मिले संत पाइये किल भगत दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफुलत

मन हर हर कथा सुखानी रखाओ। दीन दयाल हो भोजन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत से नाम मिल सारस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर के रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख पुरख मिलया सुख पाया सौ चूकी आमन जानी। नैनी बिरो देखा प्र स्वामी रसना नाम वखानी। श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती हिरदे हर घर पानी। पंच जना गुर वसगत आने तो उन मन नाम लगानी। जन नानक हर कृपा धारी हर रामे नाम समानी। सारग महला चौथा जप मन आराम।

तू हर स्वामी तू आपे ही जाने अपनी भांत हर के निगट निगट हर निगट ही बसते ते हर के जन साधु हर भगात ते हर के जान हर स्यो रल मिले जैसे जान नानक सरले सल मिला आरंग महला चौथा जापमान नर हरे नर हर स्वामी।

करत रहत निराहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सुवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, ससृड का प्रभो मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पो जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, जो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविद उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रेदर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरुख मिलाई, प्ररंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता निमक निमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुर्भाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मित्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परेओ कुसुमाही, तर मराए जा पकस बगरे तो काल मुखा उड़ जागी, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन्म बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

अपना प्रसिमरन वडभागी हर पाई रखाओ। भलो कबीर दास दासन को ऊतम सैन जन नाई, ऊच ते ऊच नाम दे समदरसी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तान तान साधन का यो मन संतरे नाई, संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारग महला पंजवा मनोरथ पूरे।

मार्ग चले तनी सुख पाया, जिनसे गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिन की तूर बांचे नित नानक, प्रा मेरा कृपा करे, सार्ग महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याए, एक पलक सुख साध समागम, कोड बैकुंठे पाए रघाव, दुलाब दे जब होत पुनीता, जंग की त्रास निमारे, महापत्ते पादक उतरे, हर नामा उतारे, जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कौ नानक पाइगे वड पागी, मन तन हुए बेगासा, सार्ग महला पंजवा, दो पदे कर चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, मोहन कर आवहो करो जो दरिया, मान करो अब महाने बोलो, पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ, निकट सुनो अर्पेखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाए पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जय बिस्तरे स्वामी, जानो कोट दिस लख बरिया, साध संत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सार्ग महला पनवा, अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सास ओई कर रहया, देह नाओ बलिहारी गाओ, चौ दिस फूल रही बिखिया बिख, गुर मंत्र मूख गरड़ारी, आदे राख्यो करे अपना, ज्यो जल कमला अलपारी, हाँ नाही किश मैं क्या हुसा, तब तुम ही कल तारी, नानक पाग प्रयोगर पाछे, राग संत सदकारी, सार्ग महला पंजवा, आप मोहे सर्प पा बिरकाते, करण कारण स्मरत स्वामी, और एक स्ते मेरी गाते रघाओ, देखे नाना रूप हो रंगा, अन नाही तुम पाते, दे आधार सर्व को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते, प्रमतो हार जो परे हो, तो गुरमिल चरण पराते, कहो नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बेगानी राते, सार्ग महला पंजवा, अब मोहे लभ देव है घर टेका, गुर दयाल पय सुखदाई, अंधले मानक देखा रघाओ, काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया, बुद्ध विगास बबेका, ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है, सेव ठाकुर पय एका, जय ते उठ्यो तय ही आयो, सभी एक एका, नानक दृष्ट आयो सब ठाई, प्राण पति घर समका, सार्ग महला पंजवा, मेरा मान एक कह ही प्रेम मांगे, पेख आयो सब थान देश, प्रे रोम ना समसर लागे, रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, पेसो दृष्ट ना करे रुचांगे, आरस चाहे प्रे प्रेम कुटेरे, ज्यो आल कमला लोभांगे, गुण निधान मनमोहन लालन, सुखदाई सरबांगे, गुर नांग प्रापाए पठायो, मिलो सखा गल लागे, सार्ग महला पंजवा, आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पए हैं, यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रघाव, तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोर और ज्ञान ध्यान एक, निमकन कीमत जाना, तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात, तुम पूर रहे भगवाना, पावो दान संत सेवा, हर नानक सद कुरबाना।

प्रभ मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाडला डावे सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसर न कबहू जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते मगन पै लिवलाई, सारग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे सुखदाता प्रत्याये रखाव। सुख मंगल कल्याण जिसे कर तिसकी सरणी पाइये, तिसे त्याग मानक जो सेव है तो लाज लोन होए जाइये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाइये।

अधिकार की ऊपर अपने काट लिया बिख के रहे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कम उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रहे कार सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कन्हेर सारग महला पंजवा प्रसिमरत दुख बिनासी पयो किरपार जी सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुमही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सब जीवन अबनासी कहो नानक मन अंध पया है काटी जमकी फासी सारग महला पंजवा।

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख कनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे कवन बसेरो दा दासन को

प्राण जीवन धन चेमृत अंध कना वड समर्थ सदा सत्संगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा मान पवित्रा।

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यों राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग मल्ला पंजवा, मोनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल

ना चोरी, अंध कूप मैं पतत होत जग, संतो करो परम गद मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

पंजवा हर घर दियो सेवक को नाम मानस का को बपरो पाई जा को रखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचा आप सेवक कै काम आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पदरा की सेवक की आप कियो बंधान आजुगा सेवक की रख नानक को प्रभ जान सार्ग मोहल्ला पंजवां।

रघाव निर्वैरी संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नानक प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यों जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन सो सगल संताप मित्र सत्तर पेख समत बिचार्यो सगल संपाखन जाप तप्त बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विस्म

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशर

मुक्त को दाता एक स्यों लिवलाओ कहो नानक ताकी सरनाई देत सगल अपयाओ। सारग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी ए ओढ़ पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रघाओ। पंच दोख छिद्र या तरम है बिखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत स्या

छोड़ो कपट होए निर्वैरा, तो प्रसंग निहारे सतन वणजो सतनक संचो कबू न आवो हारे। खात खर्चत किश निखुटत नाही, अगंत

तीर सब हुट्यो साध गयो तत घाट रहाओ अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट तेल भग करत करत पछतावे कभू न साके शांत निंदक जमदूती आए संगारेओ देवे मूंड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई मन अपना कीनू फाट सारग मोहल्ला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई न सुनई

पंजवा त्रिसना जलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात अंत पर तिहार रगाओ सांत सुख न सहज उपजे ए इस व्यवहार आ पर का कछ न जाने काम क्रोध है जार संसार सागर दुख व्यापे हो।

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रघाओ, अगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल तल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही। सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा माई री, मन मेरो मतवारो। पेख दयाल अंद सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रघाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो। चरण कम से डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो, तारग महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे। त्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रघाओ, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे। अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते, हर

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा किरदे वसे पए भंजन ते जाने सगल जहान, खेन पल बिसर नहीं मेरे करते तो नानक मांगे दान। सार्ग महला पंजवा बूठा सर्वथाई में हो, अनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। प्यार कुंट दह दिस जल निध ऊन थाओ ना के हो, कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो, सत तेजन जिन प्रतीत उपजी ना।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

मुहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याय अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बो दत करा ओम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रघाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

नैन पेखो जिन नानक नाम इष्ट लागे। सारग महला पंजवां राम राम आराम जाप रमत राम सहाई रहाओ। संतन के चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे। गुर गोपाल पय किरपाल लभदे अपनी पाई। बिरसे प्रम्हो अंध टूटे माया के बंद। पूर्ण सर्वत्र ठाकुर ने को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न पय जन्म मरण दुख गए। संतन के चरण लाग नानक गुण गाई। सारग महला पंजवां हर हरे हर मुखो बोल। हर हरे मन धारे रहाओ। श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुणे चरण। सरन परन साधु

दुख जारे, तहत मुक्त सुनत मुक्त, रहत जन्म रहते आराम राम सार भूत, नानक तत् विचारे। सारग महला पंजवा, नाम भगत मांग संत, त्याग सगल कामी रगाओ, प्रीत लाए हर त्याए, गुण गोबिंद सदा गाए, हर जन की रेन बांश, दयनगार स्वामी, सर्व कुशल सुख विश्राम, आन दा आनंद नाम, जम की कछ नाहे त्रास, तिमर अंतर जामी, एक शरण गोविंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाभ रूप साध संग, नानक पार ग्रामी। सारग महला पंजवा, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचा ते एक छूटा, जो साध संग पगराओ रगाओ, दृष्टो का संग न जाए, मान त्याग मोहा, एक घर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है रे गुण दान, सगल आस पूरी, नानक मन आनंद पए, गुर बिखम गार तोरी। सारग महला पंजवा, मन बैरागेगी, खोजती दरसार रगाओ, साधु संतन सेवक, प्रो हीरे त्यायो, आनंद रूपी पेख कै, हो महल पावोगी, काम करी सब त्याग कै, हो शरण परोगी, नानक स्वामी घर मिले, हो गुरमनावोगी। सारग महला पंजवा, ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ, मातर पितर त्याग कै, मन संतन पाए बेचायो, जात जन्म कुल खोइए, हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए, प्रभ किरत किरत करी, गुरमुखो उपदेसिया, नानक सेव एक हरी। सारग महला पंजवा, लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड हस्त पाखान जंत, सर्व में प्रतपाल तू रहाओ, ने दूर पूर हजूर संग, सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल, नान प्रभ कृपाल तू। सारग महला पंजवा, करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे, उपजता विकार दुंदर, नौपरी चुनंत कार सुंदर, अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रगाओ, तीन पौने लपटाए रही, काज कर्मना जात सही, उन मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे, उदरे घर संत दास, काट दीनी जम की फास, पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सगाई, कां की माल पिता सुध बनता, को काहू को पाई रगाओ, तन धरणी अर संपत सगरी, जो मान्यो अपनाई, तन छूटे का संग न चाले, कहां ताए लबटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तस रुचना बढ़ाई, नानक कहत जगत सा मिथया, जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा, कहां मन बिखिया स्यों लबटाही, या जग में कू रहन न पावे, एक आवे एक जाही रगाओ, कां को तन तान संपद का की, का स्यो निहो लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे, जो बादर की शाही, तज अवमान शरण संतन गहो, मुक्त होए शिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नामा, कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद बिखे रस रचियो, आराम सन नहीं आवे रगाओ, यो संसार सगल के सुपनो, देख कहां लोभावे, जो उपजे सो सगल बिना से, रहन न को उपावे, मिथ्या तान साचो कर मान्यो,

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस भंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई, नाम निरंजन उच्चरा पत स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई, मत पंखे रूवस होए।

का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए, पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाए सुने नौन दि मिले मन चिंदिया पावे, नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे, गुरमती नाव पाईए नानक गुण गावे। श्लोक महला पहला, दुख ज जमन दुख मरण, दुख वर्तन संसार, दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार, दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए, दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए, नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए, दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए। महला पहला, नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे, पसो पस कमावनी पी पस परिये देहे, जा जियो विच्चों कड़िये पसु पर आ जाए, अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए, पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे, नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे, नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे, नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे, नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। श्लोक महला पहला, कर नारायण सभा नाल।

पौड़ी, नाय मने सुख उपज, नामे गत होई, नाय मने पद पाई है, फिर दे घर सोई, नाय मने पवजल लंगी है, फिर बिघन ना होई, नाय मने पंथ प्रगटा, नामे सब लोई, नानक सदगुर मिले है, नाव मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे, एक पैर ते आए, पाउन मार मन जप करे, सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओ टिक टिके।

मंगते फिर देखे आकार नानक एवै जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाय मने सुरत उपजे नामे मत होई नाय मने गुण उचरे नामे सुख होई नाय मने प्रम कटिए फिर दुख न होई नाय मने सालाई है पापा मत तोई नानक पूरे गुरते नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला सत्र वेद पुराण पढ़ंता पूकारंता अजाणंता जा बूझे ता सूझे सोई नानक आखे कूक न होई। महला पहला जा हो तेरा ता सब कुछ मेरा हो ना ही तू होवे आपे सकता आपे सुरता सकती जगत परोवे आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखे नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवे तुर लेखे पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाई गे पाई नाम निरंजन वर्तदा रविया सब ठाई गुरपूरे ते पाई है हिरदे दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पाई। श्लोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल पौंकना।

अद पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै ब्योहारी, अंदर कपट उदर परण कै ताई, पाठ पड़े गावारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन होमे विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है।

माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाढ़े तरे आत संचय समझे नहीं मूड तान तरती तन हो गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम जो ताचियान निरपय होए पजिए भगवान बदो की ना हो माधो मोस्यों ठाकुर ते जान जानते ठाकुर खेल परयो है तो स्यों रहाओ आपन देव देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जाल कहन सुन को दूजा आपे गावे आपे नाचे आप बजावे तूरा कहत नाम देव।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत के ही। मलार महला पहला, करो

आवे बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन हरस लीना रहाओ सह सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पही सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगुण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सुहाग हरी सोग विजोत कदे न व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आमन जान नहीं मन निचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सुहागन।

जिन हर प्रब आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहोर ना पवजल फेरा। आपने फिर घर देख विगासी, तौ तन साज सीगारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद सु

मन की बिद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे घर स्यो ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नजर करे हर प्र साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हू जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

परे सदा अलागर हे निर्वाण तो पंडित दर्ग है परवान सबना में एको एक वखाण है जा एको वेखे ता एको जाने जा को बगसे मिले सोए ऐथे उथे सदा सुख होए कहत नानक कवन विद करे क्या कोए तोई मुक्त जा को कृपा होए आनंदन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्राम प्रा जोन मनमुख परमाई जम काल मारे निदपात गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रा मिलया मैल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रखाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उतार भवजर शब्द लंघावन हार दर साचे दिसे सत्यार बहु कर्म करे सदगुर नहीं पाया बिन गुर परम पूले बहु माया होमे ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवत मुक्त गुरमती लागे हर की भगत अनदिन सद जागे सतगुर सेवे आप गवाए हाँ तिन जान कै सद लागो पाए हों जीवा

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुगद गवार, अनदन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हरस पीवे रसन रसाए, कोड़ मध्य किसे बुझाई, आपे बख्शे देव डियाई, जो तुर मिलिया तो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई।

न पाए। यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सुपाए। नामहीन बिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए। बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुविध थाका कर्म कमाए। त्रै गुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या वापार। मार जन्मे फिर होए खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उर तार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेतरी तब दुर्मत मैल गवाई रघाव जाहर नवी तपे पाघीर त्याणी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चिरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई।

चुन काढ़े साधु होमे तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नार नित कपट कमात तेन को क्या कोई देख वाले कोई आप बीज आपे ही खात हर का चेन सोई हर जन का हर आपे जन में आप रखात तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरात मलार मोहल्ला चौथा आगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सतसंगत साध पाई वडभागी संग साधु पार पया मेरे मान

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाग साल सोच पवित्रा, हुण लाभ पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले।

हम एक गिरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। ओन कै संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इओ मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सो पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहु मिलाई। सागल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तेरे संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण।

आनंद मंगल सुख पाया रखाओ, मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरने वारे बौर न कतहु ताया, मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया, मलार मुहल्ला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन, किते उलास आस मिल।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझे कोए, वाह वाह कर प्रसाद आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाई है।

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

गुर के शब्द विचारी है, गुण में रहे समाए, अपना आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाए, हौ बलिहारी गुर अपने, जे सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुस्ते अमृत लुटिए, मनमुख बूझ ना पाए, विणनावे नाल ना चरसी, जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिनी कर राखिया, दूता का किश ना वसाए, सलोक महला तीजा, बा बीहा ना बिललाए ना तरसाए, यो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मन्ने तिख पुत्र है, चढ़े चवगल वन महला तीजा, बाबीघा जल में तेरा वास है, जल की माए फिराहे, जल की सार ना जानई, ता तू कुकण पाहे, जल थल 14 वर्ष दा, खाली कोथा हो नाहे, एते जल वर्ष दे तिख मरे, भाग तिना के नाहे, नानक गुरमुख तिन सोझी पई, जिन वसिया मन माहे पौड़ी, नाथ जती सिद पीर, किने अंत ना पाया, गुरमुख नाम प्याए तुझे समाया, जो शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तेरे वरताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद भुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा पाया, रखे रखनहार जिन शब्द बुझाया, सलोक महला तीजा, यो जल सब ते वरसदा, वरसे पाए सुखाए, से बिरखा हरियावले जो गुरमुख रहे समाए, नानक नदरी सुख होए, इना जनता का दुख जाए, महला तीजा, पिन्नी रैन चमकया, वुठा शैबर लाए, जित वुठे, आन तन बहुत उपजे, जां सो करे रजाए, जिर खादे मन तृप्ती है, जियां जुगत समाए, यो तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए, ज्ञानियां का तन नाम है, तद ही रहे समाए, नानक जिनको नदर करे,

रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान सिदा सुख होई महला पहला अजर जरे तन औकुर बंद पूजे प्राण होवे तिरकंद कां ते आया कां इउ जान जीवत मरत रहे परवान हुक्मे बूझे तत पछाणै इउ प्रसाद गुरु ते जाणै हुंदा फड़ियग।

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सग नानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छे सर्व शास्त्र बहुरूपिया

पवनपति जांचे कार कूर्मा पाल सहस्र फनी बासक से जवालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी चिनमे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिर पवन तनी जाचे कार निट वर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहिला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

जिस रूप ना रेख वडाम, सत्संगत मिल पज राम, बाढ़ हो पागम थाम रखाओ, जित गृह मंदिर हर होत जास, तित कर आनदो आनंद, पाज राम राम राम, राम नाम गुण गाओ हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सदगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, तब सिष्ट तार हर तुम किरपाल करता, सब तू तू तू, राम राम राम, जन नानको शरणागति द्यो गुरमती, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चाटो पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पाज हर रस रस हर गाट, हार हो लिखे लिलाट रहाओ, खड़ कर्म क्रिया कर बहु बो विस्तार, सिद्ध साधक जोगिया कर जड़ जटा जड़ जाट, कर पेख ना पाइये हर ब्रह्म जोग हर पाइये, सत संगती उपदेश गुरु गुर संत जना, खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी अत अगाहो, तू पर पुर रहया जल थले, हर एक इको एक एक हर थाट, तू जाने साबित बूझे आपे, जन नानक के प्रभ काट कटे काट कटे, काट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर अगम अगाधो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तोर हो लिखे लादो रहाओ, बिख माया संच बहु चिते विकार, सुख पाएगे हर फज संत संत संगति, मिल सतगुरु गुर साधु, जो चोहे पारस मनूर पै कंचन, त्यों पत जान मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुध हद, जो काष्ट संग लोहा बो तरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधु, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, तो आप तरह कुल सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जगावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हार हो किरपान रखाओ, तेरे जन त्यावे एक मान एक चित, ते साधु सुख पावे, जप हर हर नाम निधान, उस्त करे प्रभ तेरिया, मेरे साधु साध जना, गुर सदगुरु भगवान, जिन कै हिरदे तू स्वामी, ते सुख बल पावे, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हाँ।

अनक पांद की एक जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, तानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है, हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है, अगम पदार्थ लाल अमोला,

अवर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सौकड़ प्रभु निवास, प्राभ चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौ बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नयनो देख साध दरसेरे, सो पावे जिस लिखत ललेरे रहाओ, सेवो साध संत चिरनेरे, बांचो तूर पवित्र करेरे, अरसर मज्जन मैल कटेरे, सा सा त्याव हो मुख नहीं मोर, किस संग न चाले लाख करोर, प्रभु जी को नाम अंत पकरोर, मनसा मार एक निरंकेर, सगल त्याग है पाओ दूजेर, कामन कहा हौ गुण प्रे तेरे, वर्ण सा को एक टोलेर, दर्शन प्यास बहुत मन मेर।

हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रूप व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कांडा मोहला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रा मोह्यो ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिलो जो पाव तो जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा मोहला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्यागिए गुमान मान पेखता दयाल लाल हां हां मन चर नरेन रखाओ हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान।

ग्रेसे सुहावी अंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमन बिग सोरो।

तान मांगो तां लक्ष्मी सुत देहे मुगत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निधान पए पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी चर्च।

पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलावै गो। सतगुर मिलत महा सुख पाया,

गए सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मान गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तर कुंडे गुर अंकस।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वडभाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक मोहल्ला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनत नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मनिया जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

रूतम घर प्रव नाम है, गुर भजन सुभागे लीता, दुख दाल दिन सबो लह गया, जा नाओ गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है, ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जा देखा हर नैने, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतोल।

आवे को सुने को उचर सुनावे जन्म जन्म की मल उतर है मन चिंदिया पावे आमन जाना मिटिए हर के गुण गावे आप तरह संगीत तराहे।

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा काट लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा

रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गावे, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमादो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया। जनके तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सरण

हर गुण अकथ सुन सही, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर सही रघाव। सो हर हर नाम त्यावे हर जन, जिस बड़भाग मथई, जय दरगे प्रवलेखा मांग, ते छुटे नाम त्याए थई, हमरे दुख बो जन्म जन्म के, दुख होमे महल।

हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण मोहल्ला चौथा हमरी चितवनी घर प्रव जाने और कोई निंद करे घर जन की प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान ने हर सेवा ते कालज होए ना सके चरणी आए पवे हर जन जा को राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पैकाने ताको कोई अपर न सके जा की भगत मेरा प्रमाण हर के चोज विडान देख जान जो खोटा खरा एक निमक पछाने ताते जन कौ अंध पया है रिद सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दाते समर्थ स्वामी एक मांगो तुम पासो हरदाने जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मुझे हर चिराने

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान।

परस निपरस पै साधु जन जन हर भगवान दिखीजे सागत सूत बहु गुरजी परया क्यों करतान तनीजे तंत सूत केश निकसे नाही सागत संग ना कीजे सदगुरु साध संगत है निकी मिर संगत राम रवीजे अंत रतन जवेहर मान गुर किरपा ते लीजे मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को थम।

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाव, ब्रह्म नाम गुण साग तरोवर, नेत चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, बिचर बिचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सदगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर बेधीजे, मन मोती साल है गुर शब्दी, जित हीरा परख लईजे, संगत संत संग लग ऊचे, जो पीप पलास खाए लीजे, सब नरमे प्राणी उत्तम होवे, राम नामे बास बसीजे, निर्मल निर्मल कर्म भो कीने, नित साखा हरी जड़ीजे, तरम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बाजग दीजे, एक जोत एको मन वसया, सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजे, आत्म राम सब एक है पसरे, सब चरण तले सिर दीजे, ना बिना नगटे नर देखो, तेन कस कस नाक वढ़ीजे, सागत नर अंकारी कहिए, बिन नावे त्रिग जीवीजे, जब लग सास सास मन अंतर, तद बेगल शरण परीजे, नानक कृपा कृपा करता रहो, मैं साधु चरण पखीजे, कल्याण महला चौथा, रामा मैं साधु चरण तुवीजे, केल बेख दैन होए खिन अंतर, मेरे ठाकुर कृपा कीजे रखाओ, मंगत जन दीन खरे दर ठाडे, आतरसन को दान दीजे, त्रागे त्राए सरन प्रव्याए, मुको गुरमत नाम जरडीजे, काम क्रोध नगर में सबला, नित उठ उड़ जूज करीजे, अंगीकार करो रख ले वो, गुरपूरा काड कढ़ीजे, अंतर अगन सबल अद बिघया, हे शीतल शब्द गुर दीजे, तन मन सांत होए अदकाई, रोग काटे सूख सवीजे, जो सूरज करण रव्या सरबठाई, सब घट घट राम रवीजे, साधु साध मिले रस पावे, तत निरकर बैठिया पीजे, जन कौ प्रीत लगी गुरसेती, क्यों चकवी देख सुरीजे, निरखत निरखत रैन सब निरखी, मोह काढ़े अमृत पीजे, सागत स्वान कई

करीजे। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर पवीजे रगाव। शंकर नारद शेख नागमुन, तूर साधु की लोचीजे। पावन पावन पवित होए सब, जे साधु चरण तरहीजे। तज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे। तरमराए की कान चुकावे, बिग डुबदा काड कढ़ीजे। परम सूके बो उब सुग कहिए, मिल साधु संग हरीजे। ताते बेलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे। राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखीजे। जो बचन गुर सत सत करमाने, आगे काड तरीजे। संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बां को पीजे। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे। जे बड़पा होए अतनीका, ता गुरमत नाम जरड़ीजे। सब माया मोह बिखम जगत तरीये, सहजे हरस पीजे। माया माया के जो अधकाई, विच माया पजे पचीजे। अज्ञान अंधेर महा पंथ बिगड़ा, अहंकार पार लद लीजे। नानक राम अराम राम राम।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर स्यान सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिन नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशियां की चैवेश या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवरनास्त करणहार अपार रघाओ पाताल पुरिया एक पार हो वे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे हो वे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी हो वे दुख जित मुख तू सालाही है तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर पला सहसार जित नाम न उपजे से तन होए खुवार प्रभाती महला पहला जय कारण बेब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण चित पय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरगे साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हार मत पावे कोई रखाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोड़ पंचासा जे को एक करे चंगयाई मन चित बहुत बभावे एते गुण एतियां चंगयाईया दे ना पछोतावे तुसालाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओ ना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जाके रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले नर

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ जैसे हरड़ की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे टोट ना आवे, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनु देवे, तिस वसे मन आई।

तो नरक पर एको सब एको प्रवर्त सब एक स्ते उत्पत चल नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती मोहल्ला तीजा मेरे मान।

अड़सठ मजान सुरमान गुरमुख पावे मान जप मान परमेश्वर प्रधान खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती मोहला पंजवा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख नाम सार हो सेव ओ सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रह निरारा ता तू पावे प्राण पते रखाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए लिजक समागे जल थल मीत सो हर सेवो नीता नीत ता सखाई जे कोई न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवां, सिमरत नाम किलब सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभु की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै।

प्रभु पूरा अनाथ का अनाथ, जिस निवाजे कृपा तार, पूर्ण कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन ना पवे, ईगा ऊहा चरण पूजारे, मुख उजर साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोड़ मदे को विरला दास, जल थल महियल पेखे भरपूर, नानक उदरस तिस जन की तूर, प्रभाती मोहल्ला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल भये कृपाला, अपना नाम आप जपाया। हरहाओ संत संगत मिल भया परगास, हर घर जपत पूर्ण पई आस। सर्व कल्याण दुख मन उठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती मोहल्ला पंजवा, कर दूजा विभास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवर न दूजा ठाओ, नाही बिन हर नाओ, सर्व सिद्ध कल्याण पूर्ण होहे सगल का।

बिन नावे को साथ ना संगी, ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुर भेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच्चे शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई, इस

ज्यों पावे त्यों रखो अरदास। सच जेवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ सरनाई। कर्म धर्म प्रभ मेरे किए, नाम डाई सिर कर्मा किए। सतगुर केवल चार पदार्थ, तीन समाए एक किरतार्थ। सतगुर दिए मुक्त ध्याना, हर पल चीन पए प्रधाना। मन तन शीतल गुर बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई। कहो नानक गुर बूझ बुझाई, ना बिना गात किने ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बगस लय गुरपूरे। सची बणत बनाई हर रंग राते, सदा रंग साचा। दुख बिसरे पद पाई, झूठी दुरमत की चतुराई। बिनसत बार ना लागे काई रहाओ। मनमुख कहो दुख दर्द वे आपस, मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लय सरनाई। मनमुख ते आप भगत न होवस, होमे पजे देवाने। यो मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द न जाने। भूख प्यासा जग पया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाए। सहजे सहज मिले सुख पाई है।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

गिरहार्थ कहे, साध संग स्नेह सत्यंग सुखिंग बसंत नानक, मिथ्यंत देहंग खीणंत बलनंग वर्धंत जरुआ, हित्यंत माया अत्यंत आसा, अथित पवनंग गणंत सुवासा, पयान धर्मंग पतंत मोकूप दुर्लभ देहंग, तत् आश्रिंग नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा, काज कोटंग रचंत तोयंग लेपनंग रक्त चरमण, नवंत द्वारंग पीतरहतंग बाय रूपंग अस्थंबने, गोविंद नामंग नय सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्थिरंग दुर्लभ दे उदरहंत, साध सरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत, सुभांत तोयंग अच्युत गुणज्ञंग पूर्ण भोलो कृपाला, गंभीरंग ऊचे सर्वग अपारा, तृतीया प्रियंग

पूर्ण पुरुष भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह विसरंत नारायण है, न समर्थं न सेवकं न प्रीत परम पुरखोत्तमं तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं।

हर घर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर्वेण कुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धि।

गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है, नानक से प्राणी सुख बासन है, तैना साध समूह सूर अजितंग संग नाहंग तन निमरता आवदे गुण गोविंद रमण ओड गुर शब्द कर चरमण है, आरूढ़ ते अश्वरथ नग है, बुजन ते प्रामार्ग है, विचरते निर्भय अंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन है, जितते विश्व संसार है, नानक वस्यं क्रोत पंच तस्कर है, मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है, तते कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है, नच विद्या निधान निगमं नच गुणग

ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं हम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्पमाया

शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है, कर्ण कारण समर्थ है, दान देत प्रापूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्राम भोजोन्नी परमामण चेत हरण त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण है तब भय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे कलमूल क्रोधं कदंच करणाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्तर है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

मन बेदेव पूजन सुरत संजोग सागर मेल उद्यान बान नवखण बसदा परम मूसन प्रेम प्रम कै गनो एक कर कर्म मूसन मस्कर प्रेम की रई जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह पवर रहे लपटाए जब तब संजम हरख सोख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यो सर्ब मूसन मरमना जानई मर्त हित संसार प्रेम प्रमना बेदेव उर्जो मेत व्योहार काब दब जब जारी है विशरत प्रेम बेहाल मूसन तब की मूसी है विसरत पुरख दयाल जाको प्रेम स्वाओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे लख घाटी ऊचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नयन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रे प्रेम स्यों पूदना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लोम है नानक अधम पतंग।

लूटना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे

बावन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए, कबीर संत न छाडे संतई जो कोटक मिले असंत। मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत, कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान, कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए। कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। ए त्युत कभे ना डोलई जिस राखे सिरजनहार, कबीर कहानी पीड़ते सदगुर लिगे छड़ाए, परा पूर्वली पावनी परगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजयो ना खत फट्यो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना तरंग पिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिन हो लिया छड़ाए। महला पंजवा कबीर धरती साध की

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है।

पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल भाण तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

ही बन आवे। सदगुर नाम एक लिवन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरन खिन मातर जाको दृष्ट तारै, सदृत विचारे काम क्रोध खोवे जियो। जीर सबन दाता अगम ज्ञान बखियाता, अहिरस ध्यान थावे पलक ना सोवे जियो। जाको देखत दृदर जावे, नाम सो निधान पावे। गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल थोवे जियो। सतगुर नाम एक लिवन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा।

गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण। मूर्त पंज प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। सत रूप सत नाम ससन तुग तरयो ओर। आद पुरख प्रतख लिख्यो अशर मस्तक तोर। प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो। पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो। पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो। कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो। तेजन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास। जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो। बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो। अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो। बेन भगवंत रस नाही औरे काम स्यो। मथुरा को प्रभ सिर्फ मैं अर्जुन गोर। भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो। अंत न पार्थ देव सबे मोन इंद्र महासवि जोग करी। हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सिट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन कौ गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद ते मद चूके रे मन भेद बभेद न जान पियो। पर तचर दे गुर अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदय

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान बजन जानियो पयो ते समसर सोई तारण गागन नव खंड मैं जो स्वरूपी रहो पार पान मसरा कज पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप।

का तान फिटक फिटका कोड़ बदियां सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बूझे जिसनु नजर होए।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल न छोड़ई दूजे पाए खुवाई जो मन जानदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई उत कलत मोहित गए अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाए नव से मन आई नांग से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए होमे अंतर मैल है शब्द न काढे धोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले जिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर भजन ना करे विश्वास ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिवसदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हम सब बलगारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानकता का दास माया पुयंगम सर्प है या केरिया बिखमाए देखा मारण हर नाम गए गुर गारड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखया तिन सतगुर मिलया आए मिले सतगुर निर्मल होया बेखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए जन नानक सदा कुर्बान तेन जो चाले सतगुर पाए सतगुर पुरख निर्वैर है निध हिरदे घर लिव लाए निर्वैरे नाल वैर रचाएद अपने कर लू की लाए अंतर क्रोध अंकार है अन दिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल निध पौक दे बिख खादे दूजे पाए बिख माया कारण परम दे फिर घर घर पत कवाए बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तुसी जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुवाए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से ऊबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं

दर्ग है गुर शब्द संज्ञाप है, बेन शब्द है, मोआ है सब कोए, मनमुख मोआ अपना जन्म खोए, हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए, नानक करता करे सो होए, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, सदा सदा हर गुण रव है अंतर सहज ध्यान, ओए सदा आनंद।

तय जाओ। एवड तान होर को नहीं पाई, जेवड सच्चा नाओ। सदा सच्चे के गुण गावा पाई, सदा सच्चे के संग रहाओ। पहनन गुण चंगियाइया पाई, अपनी पद के साध आपे खाए। इसका क्या साराई है पाई, दर्शन कहो बल जाए। सतगुर विच वड्डियां वडियाइया पाई, कर्म मिले ता पाए। एक हुकम मन ना जाननी पाई, दूजे पाए फिराए। संगत टोई ना मिले पाई, पैसन मिले ना थाओ। नान हुकम तिना मनाए सी पाई, जिन्ना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो वारिया पाई, तिन कहो सद बलिहारे जाओ। से दाड़ियां सतियां जे गुरचरनी लगन, अन दिन सेवन गुर अपना अन दिन अंदर हन। नानक से मो सोने सच्चे दार दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाहे। सच्चा शब्द मन वसया सतगुर माहे सुमाहे। सच्ची रासी सच तान उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे। सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे सुमाहे। नानक विण सतगुर सच ना पाई है, मन मुख पूले जाहे। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जलनद प्रेम प्यार, गुर मिले सीतल जल पाया सब दुख निवारण हार। तिस चुके सहज उपजे चुके कूक पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उरतार। बाबीहा तू सच चौ सच्चे सो लिव लाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए। शब्द तीन तिख उतर मन लै रजाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सहज सुपाए। जल गीते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए,

जय नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले इत सच्चे दरबार तिन बहिंदिया उड़दिया कदे ना विसरै।

सोई सब कमाए, सब कष्ट दे वस, दूजी नाहे जाए। नानक सुख अनंद भए, प्रभु की मन रजाए। गुर पूरा जिन सिमरिया,

गावे बंगली, कौन असले की पई बारी, ए फैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिसाख सुनाव है, बंगालम माद माद वगाव है, ललत बिलाव लगावगी, अपनी अपनी पांत, अष्ट पुत्र पैरव के, गावे गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक आलाप है, संग रागनी पंचो थप है, गोंड करी अरदेव गंधारी,

एते कीते होर करे हे ताख न सकै के ही के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ तां लिखिया सिरगा वारांगा वार सो दर कहा सो कर कहा जित पै सर्ब समाले वाजे नादा नेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि सो कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंद आसन बैठे देवत्या दर नाले गाव है सिर समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पन्न रखीसर जो युग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसर तीर्थ नाले गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना यावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदासा साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना।

तीर जसुन यार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो

जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिंदन करकै कीती रात, खसम सारै ते कम जात, नानक नामै बायसनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरण आई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे, जन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासाय, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वै उदम।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का होए बिचारो, तित कर गावहो सोहेला सिबरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया नो, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल, देहो सजन आसीसड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जां पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए, नाउ पूजिए नाउ मनिए अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइए ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पा उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारे दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावै उजली सतसर नावन जाओ। पूरो पूरो आखिया पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावन है, पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों काटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो पैने गल मिल है अंक सह लिड़िया, मिलके करे कहानिया सम्राथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर। एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी। पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी, केतियां तेरियां कुदरती केवड़ तेरी दात। केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवै गुरबचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी होमै मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखी है आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। जिसके जी प्राण है मन वसै सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिले किसे विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण रहाओ। ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिंद तृप्ति छुट सी सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते आ गयास, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी मुठ्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस केर टह पाए। बिन शब्द सुख ना उठी है पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर रहाओ। आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान, पहला तरती साधक सच नाम दे दान।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवंद अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनास। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दर गए।

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघीऐ दरगह पत परवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलहो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है खोटना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाहा, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राणा,

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दुई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मन मुखे अंत न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचहु मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मन मुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नित नित होए खुवार, पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ, गुरमुख सदा सुहागण।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाए।

आपे जग जीवन सुदाता, आपे बख्श मिलाए, जी जानते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दे वड़ाई, आपे सेव कराए, दे कुटा मोए लोभाणा, चल दिया नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिस दी कीम ना पाई, हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंते होए सखाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई, हर जो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख देव डियाई, श्री राग महला तीजा, तन जननी जिन जाया, तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान, मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया, आपे मिलया आए, गुर शब्दी सालाही है, रंगे सह सुभाए, सच्चे सच समाया, मिल रहे ना विछड़ जाए, जो कुछ करना सो कर रहया, अवर ना करना जाए, चिरी विछुन्ने मेले आनो सत।

जिन कर कारण धारिया सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणीए जां आपे नजर करे, सेजन शब्दे सोहणे ते सच्चै दरबार, गुरमुख सच्चै शब्द रते आप मेले करतार। गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारा वार, घड़ घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है होमै विचों खोए, सात अन्ना मैं बाहरी अवगणवंती रोए, सच सलाही सच लगा सचै नाए तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए, आपे मेल मिलाएदा फिर विछोड़ा ना होए, नानक गुरसा लाही अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए। श्री राग महला तीजा। सुन सुन काम गहेलिए क्या चले बाल उड़ाए, अपना पिरना पछाणे क्या मोह दिसै जाए, जिनी सखी कंत पछाणिया।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाही काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे कोई रख ना सके दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। घड़ी मुहत का पाहुना काय सवार नहार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ। हरी नाही नह डडरी पक्की वडनहार लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार जां होवा हो।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन

रहाओ। कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो। कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ। मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ। हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारिया ना

लेकर आए आप प्रभु सब किश्त से ही हाथ मारा पेजी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पय प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल सतगुर कै उपदेश है बिन से सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक

सहजे शिव तीर्थया भवजल उत्तरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा पाइए साधु तूर लूक मावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन धारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने

कहो नानक गुर परम काटिया, सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा, दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सुजाना, रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला, गत अवगत कश नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया, श्री राम।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद बिटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडे आईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणी है सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरलावै नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै बसी।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिस होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चलै कारज सार वण जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योति अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सचै नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरां बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरां फिर आवो जाओ पुछो जाए पदा

दुख दाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटिए गुरम

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला।

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े, दूजा भाव न जाने, सतगुर भेटे निर्मल होवा, अंदन नाम वखाणे। एको पड़े एको ना बूझे, दूजा अवर न जाने, खड़ दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम भुलाए, सतगुर सेवै ता गत मित पावै, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी से उचित लागे, आवन जान रहाए, पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे, बिन गुर परम भुलाए, लख चौरासी फेर पया, बिन शब्द मुक्त ना पाए, जा नाव चेतै ता गत पाए, जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिलै सुभाए, मन तन अर्पी आप गवाई, चला सतगुर पाए, सतबलिहारी गुरे अपने विटाओ, जे हर से ती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर से ती रंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता। नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता, श्री राग महला तीजा, सहजै नौ सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम भुलाए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, पाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाए पवै, बिन सहजै कथनी बाद, सहजे ही भक्ति उपजै, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजै जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए, सहजे ही गुणी उचरै, भक्त करे लिवलाए, शब्दे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए, सहजे हर नाम वसिया, सच्ची कार कमाए, सेवड़ भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए।

सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलै सब आत्म राम पिछाणी एको सेवन एक आराधै गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवियै गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच सिऊं अपनी कृपा करे मिलाए आपे करे कराए आपे इकना सुत्यां दे जगाए आपे मिल मिलाएंदा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेवया मन निर्मला पै पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना सच नाम मन धीर मन रे सतगुर सेव निसंग सतगुर सेवया हर मन वसै लगे ना मैल पतंग रहाओ सच्चे शब्द पति उपजै सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हाँ तिन बलहारै जाओ मन मुख सच ना जाननी तिन ठौर ना कथू थाओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विचवास सदा सच्चा सलाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमती निज करवास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा होए सच्ची साखी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए जिनी सच विसारिया से दुखिए चले रोए सतगुर जिनी ना सेवियो से कित आए संसार जमदर बदे मारिए कूक ना सुने पुकार बिरथा जन्म गवाया मर जमै वारो वार एहो जग जलता देख कै भज पाए सतगुर सरना सतगुर सच दरडाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोएथा सबदे पवजल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप हैराता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमह प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देवै दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेखै कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो परतापदा सतगुर बाजना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम भुलाया आपो तो दुखवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जना के नाही जियो दोहागणी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमाणिया मैले वेस्त ना कामनी दुखी रहन विहाय जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लय मिलाए जियो हुक्म जिन्ना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सही आसे सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे कार रसाया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानी है जो सब सह ले मिलाए जियो सतगुर मिलिया फल पाया जिन विचों अह करण चुकाया दुरमत का दो कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नजर करै निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिया जित मिलिया नाम वखाणिया सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हाँ सतगुर विटों घुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नजर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माहे समाया तन करता है आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया मेरा प्रभ सब किश पाया आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवकी पैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब के जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कै मन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथा पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे दे वैले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत न होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै। अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया।

पूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुरमत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यो तुद तिहाई, एहो दान मुहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो। जिस दा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नजर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता सेती रंग न लाए, साक्त संग विकर्म कुमाए, दुलभ देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आपो पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो सरमिया साड़ी जियो, माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाने, कल कले सब दूर पयाने, सांत सुख सहज तुनि उपजी, साधु संग निवासा जियो।

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लवे अंतर सो रसोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरतै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणे जियो प्रा मृणै की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध स्याणप किछु ना जापै अपने संता नो आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलता था।

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदर जागी, बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाई है जे सिमरत वार ने चल पाई है, नानक प्रभ हो दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगह महल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जियो वारी शब्द सुहावने आ, अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछो तावने आ। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण, गुर कै शब्द नाम निशाण सबना कादर लेखा सच्चै। छूटस नाम सुहावने आ, मनमुख पूला ठावर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए। बिन नामै को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ, सागत कूड़े सच ना पावै दुबदा बांदा आवै जावै। लिखिया लिखना मेटै कोई गुरमुख मुक्त करावने आ, पे येड़ै पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवै ताही। अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बखसावने आ, पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत विचारा। आवन जाना ठाक रहाए सच्चा नाम समावने आ, गुरमुख बूझे कथ कहावै सच्चे ठाकर साचो पावै। नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावने आ, माज महला तीजा कर पहला। कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। हाँ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने आ, हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ। गुरमती प्रगास हुआ जी अंदर हर गुण गावने आ, रहाओ तन मन खोजे ता ना उपाए तावत राखै ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावै सहजे पद करावने आ, इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने आ, सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई। आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ, पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी। अज्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ, गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया। गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावने आ, हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरनी सदा चित लाया। गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्से तिस दे वड़ियाई, नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारने आ। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवै सोई बुझै गुण कै गुणी समावने आ। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावने आ। जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावने आ, रहाओ आप सुनै तैं आपे वेखै जिसनों नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावने आ। जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती,
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈੜ ਐਸੁ ਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम्या गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सा लाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नहीं चलो अगम्या पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सा लाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ। ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ ਮਿਲਾ।

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावने आ। जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावने आ। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पाए न। गुरमत मन वसावणिया, हाउ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया। जो हर सेवै से सदा सोहै, शोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरा मन पाए। सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा। जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउं जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया। एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नवनिद नाम वस्या मन आए। पूरे भाग सदगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता। तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सा लाहे, साचे ठाकर वे प्रवाहे। नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मेला बणिया। माज महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे। गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहै दिन राती। गुण कै गुणी समावणिया, हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझ ते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आ मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कल मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंधन हर गुण

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बने अवर न जाननिया। जिस कहो तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाव न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवा घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ। मूला मनो विसारीऐ रहाओ, संता संगत पाईऐ। जे जमकै पंथ ना जाईऐ, तोसा हर का नाम लै। तेरे कुले न लागे गाल जियो, जो सवरंदे साई है नरक न सही पाई है। तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया जियो, सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। हर तन जिनी संजया, सही गंभीर पार जियो। हर अम्यो रसायन पीवी है, मोह डिठे जन कै जीवी है। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसदे भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मै का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै पंजन की शरण आया। लाए अंचल नानक तारियां, जिता जन्म अपार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवां घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे रहाओ, सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे। शरण आवे पार ब्रह्म की, ता फिर काहे झूरे। चरण सेव संत साध के, सगर मनोरथ पूरे। घट घट एक वरतदा, जल थल महियल पूरे। पाप बिनासन सेविया, पवित्र संतन की धूरे। सब छड़ाई खसम आप, हर जब पई ठरूरे। करते कियत पाप सो, दुष्ट मोए होए मूरे। नानक रत्ता सच नाए, हर वेखै सदा हजूरे। बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, कित न आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबूल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा।

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धणी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दोया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हो तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुदे आपो जगत खुआया तिसना अंदर अगन है न तिपते भुखा तिहाया सह सायो संसार है मर जमै आया जाया बिर सतगुर मोहन न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना मेर हथा करना जीबे बाजो बोलना यो जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक है सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया हम मैं गर्व ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया इकना बख्शै मेल लै गुरमति तुद लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे न समाया श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आल कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने हम विच दुख काले नानक गुरमुख हमै टुटै ता हर हर नाम ते आवै नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोग उपाय पाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुक सच्चा लाए ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए जे अगर तीर्थ होए ता मल है छपड़ ना तै सगवी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए जन नानक तिस बारे हारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा एक भगवा वेश कर फिरै जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा गुरमती काल न आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा सलोक महला पहला जे रत लगै कपड़ै जमा होए पलीत जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाम खुदाए का दिल हच्छै मुख ले हो अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो महला पहला जा हो नाही ता क्या खा क्यों नाही क्या होवा कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गूहोवा नानक कहंदा होए कै दसे राह है
ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ। ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ, ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਜਿਸਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ।

जय कारण तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ कट ही माही। पड़ पट पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाना। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर

मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरना रहाओ। सतगुर मिले ता दुबदा भागे, कमल बिगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारसिया गए, सतगुर मिले सत संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जमका पौ मूचा, गुर मिले मिले अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक होमै मार मिलाया। गौड़ी महला पहला, किरत पया नह मेटै कोए, क्या जाना क्या आगे होए। ज्योतिष पाना सोई हुआ, अवर न करने वाला दुआ।

गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरी डर डरै समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारै सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती।

लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे भारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया वैवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया। हालत ना सोबा पलत ना टोई, अहला जन्म गवाया। हाँ खरी दोहेली होई, बाबा नानक मेरी।

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमे माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथै सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा।

गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोल सब पाप लै जाई रहाओ। जब गुर मिलिया तब मन वस्याया, तावत पंच रहे हर ध्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड़ ते आगे हर लिव लाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत धुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावै पारा। गौड़ी बैरागण महला चौथा, साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावै, दे रास रे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया।

हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मिले कबहू, अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो हरे आपे कानो पाईंदा मेरे गोविंदा हरे आपे गोपी खोजी जियो हरे आपे सब कट भोंगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजानना भुले मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगतो पाईंदा मेरे गोविंदा हरे आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पोगाईंदा मेरे गोविंदा एक नगर

हर हर नाम जपत जंतारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भए, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिनस जाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन का लै पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब का हूं मंगना। सब किस तेरा तू करना हार, अंत नाही किस पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से आन पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होब सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै गृह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसके पाले कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस को करे बोरंगी। कहो नानको जिस पै कृपाल, गुरपुरे ताके काटे जाल। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है। प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी। तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखां प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सत धर्मा। सर्व निधान

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत हो रह बिस्मादो, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती हो तृपतारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाईए। आठ पहर जेहवे आराद, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनिया मोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मध्य बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो, कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

जो तुम राखो तिवही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूत व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करै हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हिजात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकटना आवै माई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुखड़े राट है, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेट तह मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सूखया नंद असहज सूखया नंद निदान, रखन हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जा को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै कले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस्या मिलावे सर्वरदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटै आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पछाणा जन उपर प्रभय दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वरदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिव लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहलना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिले वड़ियाई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जाकै है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पौ काहे का मानै हर बिसर तो काहे सुख जानै रहाओ जिन तारे बहुत तरन आगास जाकी जोत जी प्रगास जाकी बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपौ होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरणी पाहे कोट कलंक।

मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावै बहु जोन पवाइय, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमानै, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, हाव तन मन तो पालक सच नाए, हर गुण गावै सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल, खावै खर्चै रल मिल पाई, तोट ना आवै वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाना लिया रलाए, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखिया भरपूर।

हमारा अंतर्यामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दास तुम ठाकर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही का लंगा। माधो जा को है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी। रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए, ताको सहसा नाही कोए। जा को तुम दीनी प्रभ धीर, ताकै निकट न आवै पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा। दुलभ देह पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्म घाती। मर न जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कौन काम। रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार, कवन अर्थ मृतक सिंगार। जो ना सुने जस परमानंदा, पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिद महे समाया। गौड़ी महला पंजवा। काकी माई का को बाप, नाम तारीक झूठे सब साक। काहे को मूर्ख पखलाया, मिल संयोग हुक्म तू आया। रहाओ एका माटी एका जोत, एको पवन कहां कौन रोत। मेरा मेरा कर बिल्ला ही, मरण हारे हो जियरा नाही। कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा। वड्डे वड्डे जोधी सै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिवलाई। रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक्यो तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा। पूरा मार्ग पूरा इसनान, सब कुछ पूरा हृदय इनाम। पूरी रही जा पूरा राखी, पार ब्रह्म की शरण जनता की। रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख, पूरा तप पूर्ण राजयोग। हर कै मार्ग पतत पुनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक। करण हार सदवसै हदूरा, कहो नानक मेरा सदगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिट अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट। संत का दर्श पूर्ण स्नान, संत कृपा ते जपिए नाम। रहाओ संत का संग मिटिया हंकार, दृष्टिया वै सब एक अंकार। संत सो प्रसन्न आए वसपंचा, अमृत नामृत लै संचा। कहो नानक जाका पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है, हर सिमरत त्रा सबनास है। सा मत पूरी जित हर गुण गावै, वड्डे पाक साधु संग पावै। रहाओ साध संग पाइए निदनामा, सा संग पूर्ण सब कामा। हर की भगत

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले, गौड़ी महला पंजवां, ताप गए पाई प्रभ सात, शीतल पय कीनी प्रभदात,

सहे सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवां, भले दिन स

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जस पी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को पए कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सात आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेश, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लखबारी, अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए, साध कै संग किलबिक सब धोए। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दी जय सादर वाला। गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, तिस्यों आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे। रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोबा, दास सलाम करत कत सोबा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तसै न जाने सुवान।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे जिन्ना

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभुदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महा गरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा।

गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलवक सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही, हर बिसरे है दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे, सो वड़ पागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक कहो मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल, रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ता का मन लाग, गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग, ओह बिखई ओ श्राम को रंग, रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी, बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै, गऊ चर सिंह पाछे पावै, गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत, गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट, रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सब ते ऊंच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवा, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लए पूरा।

गई ब्याद उबरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तन ओ मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लईऐ, रसना राम नाम जस कहियै रहाओ, तेन उपर जाइय कुरबान, नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राखै सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई रहाओ, आगे आप एहो थान वस जाकै, आठ पैर मन हर को जापै, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करै फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ, कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ, पूजा तिलक करत इशनाना, छुरी काड लेवै हथ दाना, वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जियां कुहत ना संगै प्राणी, कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म बिचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सुवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै, हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सफल फलाओ, सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुन गाए रहाओ, हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता, हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस, हर संगराते दुख ना लागै, हर संगराता अंदन जागै, हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौ नसै, हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको परम मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत

खेम पया कुशल घर आए, पेट साथ संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक को प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरुदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा रहाओ। आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पय सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आप पैज रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए। रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिरसे आत्म सुख सारा। कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूर्ण पाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रपत गवाई, नानक हर गुण निरपौ गाई। गौड़ी महला पंजवा, पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गए लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुखदातया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्तो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सदी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला, कवन विधि विचार। शरण समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अहट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न पय के सवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुतबंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिखतर या संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के, शंत के घर। महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै,
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਬਨ ਬਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ। ਜਨ ਮਰਨ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਉਚਿਆ ਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮਾਂਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਰਹਾਉ ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ, ਮੋਹ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਨਾਹਿਨ ਦਰਬ ਨਾ ਜੋਬਨ ਮਾਤੀ, ਮੋਹ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੁ ਫਿਰਤ ਤਸਾਈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸਾਹ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਕਉ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਫਿਰਾਓ ਤਿਸ ਪਿਛੈ ਵੈਰਾਗੀ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਗਹੋ ਪੂਰਨ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੀਅਰੇ ਸੰਗਰਾਖ ਰਹਾਉ, ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ। ਆਤੀਖਣ ਮੋਕੀ ਫਾਸ, ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੀਨਾ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ। ਕਰ ਗੈ ਲੇਹੋ ਨਾਨਕੇ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਪੇਖਣ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਆਸ

दास दासन की अनक पांत करो निहोरा, तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। केन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया, विच पढ़दा हूं मैं पाई। माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। एक बसद बिन पंच दुहेले, ओ बसदा गोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। अन क्यों पाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर सरनाई। जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज पया परम खिन मैं नठा। मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लै, सतगुर मजै बतायो रहाओ। जात का देखो ताता तुम ही, मोहे एहो विश्वास होए आयो। कै पै करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रगरायो। लयो सहसा बंधन गुर तोरे, तां सदा सह सुख पायो। होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर पर्दा खोल दिखायो। नाव निद नाम निधान इकठाई, तो बाहर कैठ जायो। एक कनक अनक भांत साजी, बहु प्रकार रचायो। कहो नानक परम गुर खोई है, इव तत् तत् मिलायो। गौड़ी महला पंजवा, औद कटै दिन सुरै नारे। मन गुरमल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। एहो संसार बेकार सहसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आए हर रस, अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सोई विहा जाओ, हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास ही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवा, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण।

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरै। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरै। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरै। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मै रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिन मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपौ निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुरु अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय, जम बनते छूटे। सर्व सुखा सुख पाइए, सेव स्वामी सतगुर दाता। मन वंचित फल आइए, नाम इष्ट मीत सुत करता। मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सदगुर अपने की। गुरते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी। बिन से सर्ब अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन। मिट्यो सगल कलेसा, राग गौड़ी महला पंजवा। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो अनद खेलो, रहे फेर पय मेल, नानक गुरशब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साधकी, हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए, बिचहु मैं बदे बिकार, नरक सुर्ग दोए पुंचना, होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी, निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं, हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया, मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना, कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, तेते बंद परे, जाओ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जाओ लो मेरो मेरो कर तो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए।

त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ। मान अभिमान दो उस माने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाक रह लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपव पय संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कह सोयो मन जाग्यो। जल नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो। गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया।

पंजवां उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सात सिमरत वेद बिचारे महापुरख ने ओ कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख न किन्हू लहया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बुझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन मरण निवार नानक जन की तूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको हिबद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किश इन्हें कमानो जब तब कछु ना सादा दह दिस लैयो मन दौरायो कमन कर्म कर बादा मन तन धन भूम का ठाकर हाँ इसका हो मेरा भरम मोह कै सूझ सनाही एह पैखर पै बैरा तब एहो कहां कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन रंकार प्रभु सब कुछ आपै करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिने हो रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हार बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह ओर है मूसे रहाओ बरत नेम संयम में रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चरण ओर है पाई ऊहा काम न आया तीर्थ नाए

क्या किश करै के करणै हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बेद खोजनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रमपो काट किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे।

वानत्रेण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो चरण पखार करी नि सेवा जियो पूजा अर्चा बंदन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकर पै कहिए जियो इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो एहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवां मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप। तत्ती वाव ना लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दै गुर, गुर सच्चा सृजनहार। गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माझ महला पंजवां, हर राम राम राम रामा। जप पूर्ण होए कामा रहाओ। राम गोबिंद जपिंदियां, होवा मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिसते, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोबिंद मनो विसारी, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे जीवी, भवजल पई पार। मिल साधु संग उधार होए, मुखी उज्जल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस, संत जना की रास। नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू। तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतियां मिलिया निथावें थाओ रहाओ। होर साध सब फिकिया, तन मन फिका होए। विण परमेसर जो करे, फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधका, तरना एहो संसार। पार ब्रह्म आराधी है, उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे। अवगुण सब मिटाए कै, पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर, हर के चरण निदान। नानक जाचक दर तेरे, प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी महला नावा। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना। हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्याग, खोजे पद निर्वाना। जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई। एक बिनसै एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथिया, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवै। अहनिस मगन रह माया मैं, कहो कैसे गुण गावै रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावै। मृग तृष्णा ज्यो झूठो, एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूढ़ ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई।
रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासो कछना बसाई। जोगी जतनो करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तो सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन, भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बानो ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहो ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसे जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कट नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तय हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी राचो हरनाए, सिख्या दीख्या पूजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना, जोत पही ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान, राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्नि इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता।

मन भूलो बहुचतै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हरेक ओंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुवै खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्यां न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सै सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सहे सुभाए, गुरमति नामृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुर

हरनाक्षले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखा।

सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्याह त्यागे कवरे भाई मिलाए सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जा रै सो उबरे गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना मिर्ग मरे सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चित कामण हितकारी क्रोध विनाशे सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ दे काम दाम चित पर वसेई बिन पर तृप्त ना कबू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पसम लगावे नाम बिसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बिसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजै सो काल संघारिया, हम हर राखे।

सहितन उपजय हर लिवलाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा। मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई। मूल छोड़ लागे दूजै भाई, बिखका माता बिख महे समाई। माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजै पाए। जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए। साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए। मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए। तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोझी पाए। आपे करता सिरिट सिर जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही समावै। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुणतास। दासन दास नित होवै दास, गृह कुटामै सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई। त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटम स्यों प्रीत ना होए, जां हृदय वस्या सच सोए। गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणै बूझै सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए। कृपा करै गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मै लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसै अंदर लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरै वडभागी। हम मैं ममता दुरमत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए, नानक सहजे साज समाए। गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया पैसे सुभाए। शब्द मन रंगिया लिवला।

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरी ना, ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी। रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ता ते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किस्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सबके सूझया। जब एहो तावै माया अर्थी, न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जवला।

खाए, जास जबत फिर दुख ना लागे, जास जबत हम मैं भागे, जास जबत वसिया वै पंचा, जास जबत हृदय अमृत संचा, जास जबत एह तृष्णा बुझै, जास जबत हर दरगह सजै, जास जबत कोट मिटै अपराध, जास जबत हर होवै साध, जास जबत मन शीतल होवै, जास जबत मल सगली खोवै, जास जबत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जबत कई बैकुंठ वास, जास जब सो सहज निवास, जास जबते अग्न पोहत, जास जबते काल ना जोहत, जास जबत तेरा निर्मल माथा, जास जब सगला धुलाता, जास जबत मुश्किल कछु ना बने, जास जब सुन अनहत तुने, जास जबते निर्मल सोए, जास जबत कमल सीधा होए, गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरि, अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै, दस इंद्री कर राखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताकै होए, जा कौ दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाकै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान है,

जपना सहजे भोजन सहजे भाओ सहजे मिट्यो सगल दोराओ सहजे होवा साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्म संग सहजे गृह में सहजो दासी सहजे दुबदा तन की नासी जां कै सहज मन भया आनंद तां कौ भेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया तां कै संग अबनासी बसिया सहजे आसन आसर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रोण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा जा कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपरे कवन स्थान जो कबो न टरे कवन शब्द जे दुर्मत हरै रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना शिवपुरी गा होएगा काला त्रै गुण माया बिरस बिताला गिर तर तरण गगन यार तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत यार भेदा सास्त सिमरत बिनसै गे बेदा तीर्थ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर कर हिंदू पशपंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगलिया कारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद निहचर सजथाना तहां संगत साध गुण रसै अनपौ नगर तहां सदवसै तह पौ भरमा सोग न चिंता आवण जावण मृत न होता तैं सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसै कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत ना पार कौन करै तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करै निहचल थान साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तसै वडे।

जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोए जो दुबदा मार गुवावे, इसे मारो राजो कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौ ना है, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सजय, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निचल तनी, जो इस मारे सो वट भागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सही त्यानी, इस मारी बिन थाए ना परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म ना मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जा कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जा की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर रहाओ। वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिन सजाए माया के हेत, तो हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरे सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड गमर, जा कह काम होवे तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछे ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह उन नाही काहू बात, एक आपन एक पात, जा की दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जस भागा। गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवे साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहाओ। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याही, साकत थान प्रहिट फिराही, बिन सिमरन कुकर हर काया, सागत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म घाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल ते सत्संग मिलाया, कौ नानक गुर जगत राया। गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ। गुर कै बचन सुन रसन मखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग,
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਹਰਾਓ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ, ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਖਾ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समरथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत ना लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना अरादा, चोर की न्याई जमपुर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्थारा, नाम बिना झूठे पासारा।

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागणो ना पर मर न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सह सुमाए, दुबदा सह सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एह शरीर कुड़ एह एक शरीर कूड़ कु सत भरिया, गलत आई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगति मैल न जाए, नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे, अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, आनदिन दुख निवारे, अंतर महल पर रावे कामन गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागण गुर कहत अपारे।

राम नाम वा पाराग में अपारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे। जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुखै दाते हम विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामणो मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत था गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह।

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आराधी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है काल मलै दैता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मन आचिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तुहारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किसै काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कहला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोहै साधु मंत सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है काल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई भ्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट पागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद्ध गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कार। सलोक आपे किया कराया आपे करने जोग, नानक एको रव रया दूसर होवा ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपे सुनो आपे सुख आसनो, आपे सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखमो आपे अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण।

ओवं गुरमुख कियो अकारा, एक सुत परो बनहारा, भिन्न भिन्न त्रै गुण विस्थारं, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं, सगल पांत कर करै उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दूहू पांते आप निरारा, नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सेई साह भगवंत से, सच संपै हर रास, नानक सच सुच पाई है, ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सौ, सतपुरख ते पिन ना को, सौ सरन पर जेह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं, संसय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहूं को जापत, सो

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तांते उजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना आछ अत प्रे प्रीत साधरा।